सभी श्रीवालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसो। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी श्रीवालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। श्रीवालों, आज शुक्रवार का दिन है। आप सभी श्रीवालों को एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी श्रीवालों को शुभ सुबह पेश किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से। श्रीवालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में, सुबह सुबह लोग

ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है। सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन अभी आपने सुना। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है जहाँ जहाँ पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं। शुक्रवार का दिन है, माता जी का दिन है, तो आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार रबीन। चले अगला भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुंदर सा माता जी का भजन आप सुनते ही रहना सोनू निगम की आवाज में।

निगम सोनू निगम की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और साथ ही साथ सुनने वालों, दुनिया की कोने कोने में सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। चले प्रोग्राम में एक संतोषी माँ का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में ये भजन की ओर हम आपको ले

सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। बहुत से सुनने वालों इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं, भजन यात्रा प्रोग्राम जो हर सुबह आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अबकी बार एक भजन पेश किया जा रहा है, अति सुंदर भजन है, सोनू निगम की आवाज में, जरूर आप सुनते ही रहना।

निगम की आवाज में अभी आपने सुना आसरो मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये खास भजन जो पेश की गई है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड की जरिए कंप्यूटर की जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। दुनिया की कोने कोने में और दुनिया की कोने कोने में भी इंटरनेट रेडियो की जरिए हर एक इंटरनेट रेडियो की जरिए भी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

अति सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं सुंदर सा चालीसा की ओर। श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से।

सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पीस की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

सुनवलो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। अरिजीत सिंह एंड

पीस से बाबेब रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में श्रेया घोषाल और जावेद अली प्रोग्राम में।

पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए फिल्म शोबिस की ओर है। शान और अब की बार श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

श्रेया की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। द फिल्म शोबिस, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गीत पेश किया जा रहा है।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सभी कामों काज के लिए। रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 032-65-60-65-60। अनुराधा पोटवाल और कुमार सानू प्रोग्राम में। फिल्म का नाम शुक्रिया।

भाई अली खान और साथियों की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हजरों मीठे के गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए एक बार फिर से राहत जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। साथ में होगा श्रेया घोषाल।

फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना आज की प्रोग्राम में अलका जी की आवाज में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है सोल्जर।

0: में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुने लाइव के जरिए ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शहर यूट्रेक्ट से ये प्रोग्राम सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में
1: तुझसे अब मुझे मरना है
0: राहत जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

9:06 प्रोग्राम में 6 मिनट व्यतीत हो चुका है। सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज शुक्रवार का दिन है, 19 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज काफी गर्मी सा मौसम होने वाले हैं। मौसम के साथ शाम के वक्त में कहीं कहीं जोर जोर से बारिश भी होने वाले है। मौसमी समाचार से ये खबर मिलते हैं। फिर भी आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं रेडियो SBS का, मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है और रेडियो SBS का एप नंबर 0302266611। बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए

वेबसाइट radiosbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं, सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और भले देश के बीच में मिड नीदरलैंड और दूर दूर शहरों में और खासतौर पर प्रोफेसी साइड होलैंड और दूर दूर शहरों में हमारा प्रोग्राम दे या बे प्लस रेडियो के जरिए भी अपना मोटरकार में अपना घरों में आप सुन सकते हैं। वेलकम सभी को कहा जा रहा है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम बस यहां से पेश किया जाएगी, जिसमें सिर्फ पुरानी से पुरानी नगमे आप हर एक के लिए बस पेश किया जा रहा है। तो हम आपको ले चलते हैं पहला गाना की ओर जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। लेकिन पहला गाना पेश करने से पहले गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ आप सभी को बस

फिल्म का गीत पेश की गई महेंद्र कपूर और आंशा जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जबकि 9:00 प्रोग्राम में 12 मिनट व्यतीत हो चुका है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-2266611। इसी डार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर हमेशा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, एक प्रोग्राम जो बहुत सी सुनने वालों बस हमेशा और रोजाना भी सुनते हैं, इसलिए कि ये प्रोग्राम रोजाना आपकी सेवा में बस पेश किया जा रहा है सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। मेरे सनम फिल्म का नाम

Așa Gigliia v-am spus, gata vă spui, scrie gai. Bisogit daur, așa pare că acting gia hua film, film că n-am mire sănăm. गर्मी सा मौसम है बाहर और स्टूडियो के अंदर ठंडी ठंडी सा है और पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों है जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप कर रहे हैं, सभी को वेलकम कि आप सभी हमारा साथ देते हैं। लता मंगेशकर 1952 1952 का फिल्म का नाम आन, दिलीप कुमार का एक्टिंग।

लता जी की आवाज में ये गाना बस पेच की गई पुरानी फिल्म आन का गीत अभी आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस पेच की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 7 मिनट बाकी है सुबह साढ़े 9 बजे में और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेच किया जा रहा है। एडो फिल्म फरार किशोर एन लता जी की आवाज में एक गाना पेश होगा मैं प्यासा तुम सावन। देनहक शहर की रहने वाली सिंथिया सुक्कू खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है किशोर और लता जी की आवाज में। फिल्म फरार उसी फिल्म का गाना इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। देनहक शहर की रहने वाली सिंथिया सुक्कू की मांगी हुई गाना।

0: गाना जो पेश की गए, मैं प्यासा तुम सावन, द मैन विद हैव अ ग्रीन वॉइस, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म फरार का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए। डनहाग शहर की रहने वाली सिंथिया सुखु ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए है। शुभ दिन और अभी से शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। टेम्स ड्राइव 237 शहर उत्तरेख से ये प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज शुक्रवार का दिन है और आज के प्रोग्राम में आप सभी को पूरा मौका दिया जा रहा है गाना मांग करने के लिए। आज के प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों को मौका दिया जा रहा है एक गाना मांग करने के लिए पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में। तार कीजिए टेलीफोन नंबर 03-226-6611 या तो हमारा रेडियो SBS का ऐप का मिलाइए।
1: दिस इज योरीन वालास मिट द हॉफपुंटें वन द रेडियो न्यूज़ ऑफ रेडियो SBS। Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens nu 10 minuten vertraging.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Radio SBS wens je een mooie zonnige dag.
0: संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। बहुत से सुनने वालों हैं जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते हैं। पुर्तगाल अलगार्फ में हमारा एक सुनने वालों है जो डेल्फ्ट शहर में रहता है, लेकिन इस वक्त पुर्तगाल में हॉलीडे मना रहा है। उनको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। और वो है शांति प्रकाश आउट डेलफ खाओ, जो इस वक्त पुर्तगाल में है, अपना फकांसी मना रहे हैं और वहां पर भी हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। चले गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और डनहाग शहर की रहने वाली उषा भी प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और एक खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के आवाज में मांग किया है आप सभी सुनने वालों के लिए और रेडियो SBS का पूरा टीम के लिए। तुम्हें दिल से चाहा मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर, डनहाग शहर की रहने वाली उषा की मांगी हुई गाना।

तुम्हें दिल से चाहा, तुम्हें दिल दिया है। मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना पेश की गई। चांद और सूरज फिल्म का नाम, 1965 का फिल्म, 1965 का फिल्म, मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। दरहाग शहर की रहने वाली उषा ये खूबसूरत प्यार भरी गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया आप सभी सुनने वालों के लिए और रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के लिए। सुनने वालों, सस्ती दामों में इंडिया भारत देश का कपड़े, सलवार हुआ, साड़ी हुआ, लहंगा हुआ, या जो भी कपड़े आप खरीदना चाहेंगे, हॉलैंड देश के अंदर में सबसे बड़ा दुकान जो होता है मुस्कुराता फैशन, मुस्कुराता कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 पर है दनहाग शहर के अंदर में। गाड़ी से आप आएंगे तो फ्री पार्किंग है यहाँ पर, ग्रेटिस पार्किंग, सस्ती दामों में बहुत से सामान यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। 300 फीट का मीटर बड़ा दुकान है और हर सप्ताह नई से नई कपड़े, गहने, तरह तरह की सामान यहाँ पर अंदर आते रहते हैं। मुस्कुराता दुकान जो है दरहा शहर कारल रोस्ट्रात नंबर 4 पर। और अगर आप मुस्कुराता दुकान के पास गए तो जरूर कहना कि रेडियो SBS आपको भेजा है, और भी ज्यादा कटौती कोर्टिंग आपको दिया जाए।

हमेशा बड़ी प्यार के साथ स्वागत करते हैं, तो जरूर जाइए और अपना हर एक सामान, कपड़े जो है इंडिया भारत देश का, गहने मूर्ति और आरम बम से लेकर के तरह तरह के सामान यहाँ पर आपको सस्ती दामों में दिया जा रहा है। जरूर कहना अगर आप जाए कि रेडियो SBS पर आपने खबर सुना है और रेडियो SBS आपको भेजा है, तो एक्स्ट्रा कोर्टिंग, इतना ज्यादा कोर्टिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतनी कम दाम में सामान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए हॉलैंड देश के अंदर में सबसे बड़ा दुकान होता है 300 फीट कांतमीटर, सामान यहाँ पर आपके लिए बस होता है।

जो डेलफ गांव शहर का रहने वाला है, इस वक्त अपना हॉलीडे मना रहे हैं पुर्तगाल अल्गार्व में, और वहां पर हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। और एक खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म जमीर। जिंदगी हंसने गाने के लिए है।

और रेडियो SBS की जरिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जमीर का गीत बस पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। और डेल्फ खाओ शहर का रहने वाला शांति बरखास का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। इस वक्त पुर्तगाल में है और वहां पर हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और अपना हॉलीडे जो है फकांसी जो है अच्छी से बस मनाना। गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा एक नॉन फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगा। रोटरडम शहर का रहने वाला राज राज का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। काफी पुरानी फिल्म या कहिए काफी पुरानी गीत है एक

नॉन फिल्म का गीत बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और ये खास गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई, रोटरडम शहर का रहने वाला राज ने मांग किया, जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611 और इसी तार की नंबर पर रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। आज शुक्रवार का दिन है, सुबह की प्रोग्राम पेश किया जा रहा है पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम। और आज की प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों को मौका दिया जा रहा है एक गाना मांग करने के लिए। स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं, ऐप द्वारा भी आप तार कर सकते हैं और वो भी तार का नंबर जो है 030-262-6611। रोटरडम शहर के अंदर में शीला भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और शीला मुकेश जी की आवाज में गाना सुनना चाहते हैं, तो ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। मुकेश का खास गाया हुआ गाना है दीवाना फिल्म का नाम। रोटरडम की रहने वाली शीला

रेडियो SBS के जरिए माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश की गई दीवाना फिल्म का नाम था। रोटरडम शहर की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आने वाले रविवार, आने वाले इतवार पिता दिवस का दिन है, यानी कि फादर डाक का दिन है। आप सभी को बस याद दिलाया जा रहा है कि आने वाले रविवार पिता दिवस का दिन है, फादर डाक का दिन है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं।

एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। और गाना को मांग करने वाली है आम्स्टरडम साइटोस की रहने वाली श्रीमती बेया। श्रीमती बेया भी हमेशा और सालों से हमारा रेडियो SBS का प्रोग्राम आम्स्टरडम साइटोस में बस सुनते हैं। और आज की प्रोग्राम में ये खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में मांग किया है, आई मिलन की बेला फिल्म का नाम।

फिल्म का नाम था आई मिलन की बेला। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में मांग करने वाली थी एम्स्टर्डम साइटोस की रहने वाली श्रीमती बेया। श्रीमती बेया ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में लता जी की आवाज में, और लता जी की आवाज में खास गाना मांग करने वाली उत्तराखंड शहर की रहने वाली श्रीमती मखदा नुंदा। श्रीमती मखदा नुंदा भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और उनकी फेवरेट भरी गाना उनकी मनचाहत गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है लता जी की आवाज में।

पुरानी फिल्म मेरा साया उसी फिल्म का गाना भोजपुर गांव में पेश की गई। उत्तर शहर की रहने वाली श्रीमती मखदा नुंदा ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। आश्रो उम्मीद है गाना आपने मांगा, आपने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। घड़ी की ओर देखा जाए 10:00 प्रोग्राम में 6 मिनट वैधित हो चुका है। तुरंत हम आपको ले चलते हैं न्यूज मौसमी समाचार फकीर्स इन्फॉर्मेशन की ओर, तो जरूर आप सुनते ही रहना। Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je vermais. €5 per vermais. €5 per vermais met gratis download.

एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, बेटी बेटे फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत आप प्रोग्राम में सुनते ही रहना। इंडिया भारत देश नोएडा के रहने वाला अरुणेश ये खास गाना मांग किया है आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए खास तौर पर मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और खास तौर पर इंडिया भारत देश नोएडा का रहने वाला अरुणेश ये खास गाना आप सभी सुनने वालों के लिए मांग किया जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। और खास तौर पर जहां जहां पर भी सुनने वालों प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं आप सभी को वेलकम। अब की बार मॉरिशियस की ओर हम आपको ले चलते हैं। दुष्यंत झिंगरी हमारा प्रोग्राम भी इस वक्त सुनते हैं और एक गाना मांग किया है फिल्म नाइट इन लंदन महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में और गाना पेश कर रहे हैं सभी सुनने वालों के लिए और खास तौर पर इंडिया भारत देश नोएडा का रहने वाला परिवार अरुणेश के लिए ये गाना भी पेश कर रहे हैं।

Night in London film का गीत पेश की गई महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना, मॉरिशस का रहने वाला दुष्यंत जिंगरे ये खास गाना मांग किया आप सभी सुनने वालों के लिए, और खास तौर पर सभी सुनने वालों के साथ ये गाना भी पेश की गई इंडिया भारत देश नोएडा के रहने वाला और परिवार अरुणेश के लिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही

studio kan telefoonnummer hè. 030-262-6611. सुनो वाल उतार कर रहे हैं, अपना अपना गाना मांग कर रहे हैं। हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी काफी लोग काफी जोर तोर से बिजी है, ऐप द्वारा भी सुनो वाल उतार कर रहे हैं। चले प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो पेश होगा मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, जय विजय फिल्म का नाम, उसी फिल्म का एक बड़ी ही खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है। उत्तराखंड शहर की रहने वाली सपना स्पेशल ये गाना मांग किया है, समवन स्पेशल के लिए, एक दूजे के लिए, बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ ये गाना पेश कर रहे हैं।

0: सबसे बेहतर है।
1: खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। ये गाना अभी आपने सुना, जय विजय फिल्म का नाम था और खासतौर पर उत्तराखंड शहर की रहने वाली सपना स्पेशल ये गाना मांग किया है अपने सोमवार स्पेशल के लिए और एक दूजे के लिए भी। ये गाना प्यार मोहब्बत के साथ बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए, लाइव के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और हमारा ये प्रोग्राम जो है ज़रूर और ज़रूर सुनते ही रहना। चले अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम शोर, मुकेश और लता जी की आवाज में उत्तराखंड शहर का रहने वाला विजय ये गाना को मांग किया है।

साढ़े दस बजकर प्रोग्राम में 6 मिनट वेडिट हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। अब की बार गाना जो पेश होगा और गाना को मांग करने वाली है लेलिस्ताद शहर की रहने वाली शलिनी जगाए ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और ये खास गाना आज के प्रोग्राम में लेलिस्तान शहर की रहने वाली शलिनी जगह ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। ये प्रोग्राम हर सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और आज शुक्रवार की प्रोग्राम में आप सभी को पूरा पूरा मौका दिया जा रहा है अपना गाना अपना गीत मांग करने के लिए। सुनने वालों, इन दिनों वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉल खेल हो रहा है और आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि आज रात्रि में ठीक 9 बजे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। उसके बाद रात्रि में 12 बजे एक और जबरदस्त खेल स्कॉटलैंड और मारोको का मुकाबला होने वाले है रात 12 बजे। और उसके साथ भी आपको खबर किया जा रहा है कि और भी खेल होने वाले हैं रात्रि के वक्त में। चले हम आपको बताते हैं कौन कौन सा खेल होने वाले हैं। जिस तरह से मैंने आपको खबर किया आज रात्रि में 12 बजे स्कॉटलैंड और मारोको का मुकाबला होगा। उसके बाद रात्रि में 3 बजे ब्रासिलिया और हाइटी का मुकाबला होने वाले है और सुबह 5 बजे तुर्की और पाराग्वे का मुकाबला होगा। और जबरदस्त खेल होगा कल रात्रि में 7 बजे, हाँ, जब ये नीदरलैंड और स्वीडन का खेल होने वाले है। और उसके बाद एक और जबरदस्त खेल होगा और वो है रात्रि में 10 बजे, कल रात्रि में 10 बजे डॉचलैंड और ईफोर कुस्त का मुकाबला होने वाले है। और आगे में देखा जाए रात्रि में 2 बजे एनम ट्विंटक 21 तारीख जून के रात्रि में 2 बजे इक्वाडोर एंड क्यूरासाओ का मुकाबला होने वाले हैं। ऐसे ढेर सा खेल होने वाले हैं लेकिन हमने आपको खबर किया कौन कौन सा खेल आज और कल रात्रि में बस होगा। खौडा शहर की रहने वाली रीमा हमारा प्रोग्राम भी इस वक्त सुनते हैं और रीमा लता जी की आवाज में ये गाना को मांग किया है।

अब तो है तुमसे हर खुशी बस अपनी, लता की आवाज में फिल्म का नाम अभिमान, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में खाउडा शहर की रहने वाली रीमा की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी। आज की ये पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में जरूर है और जरूर आप सुनते ही रहना। आपको हम खबर करना चाहेंगे कि इस साल मिलन समर फेस्टिवल 21, 22 और 23 अगस्तस होने वाले हैं साइड पार्क डेन हाग में। हर एक इन्फॉर्मेशन क्राम फरहूर के लिए टिकट के लिए आप जरूर जाइए वेबसाइट milansummerfestival.nl milansummerfestival.nl। मोहम्मद रफी आन मिलो सजना फिल्म का गीत पेश होगा और आमस्टरडम शहर से आंद्रे ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है आन मिलो सजना फिल्म का नाम।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई और खास तौर पर आमस्टरडम शहर का रहने वाला आंद्रे का मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है सभी सुनने वालों जो तार किया है और अपना अपना गीत को मांग किया है, शुक्रिया धन्यवाद सभी को, शुभ दिन। और आखिरी पर प्रोग्राम पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो है खत्म करने से पहले एक आखिरी गाना पेश किया जा रहा है और ये गाना एक सुनने वालों बस सुनना चाहते हैं। रोटरडम शहर के अंदर में हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना को सुनना चाहते हैं। कल शनिवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगा।

की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई नजर फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में, चले प्रोग्राम में अबकी बार गाना जो आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, हम आपको ले चलते हैं अबकी बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुन वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए, और वो भी अरिजीत सिंह की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए खासतौर पर अरिजीत सिंह की आवाज में गाना भी आपने सुना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में KK एंड सुनिधि चौहान की ओर हम आपको ले चलते हैं।

uit de film No Entry. KK en Sunidhi Chauhan की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में. चलिए प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है.

के एडवांस में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और अलका जी के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म

रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। आवाज में जिंदगी एक छाव फिल्म का नाम है और उसी फिल्म से

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। कुमार सानू और अलका की आवाज में आपकी बार ये गाना, फिल्म का नाम यस बॉस।

आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना और कुमार सानू जी की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा

सभी सुनने वालों की सेवा में ये दूरियां गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई, फिल्म का नाम था लव आजकल। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, बेनी दयाल और शरारा पंडित की आवाज में ये गाना।

की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए हम आपको ले चलते हैं सोनू निगम की ओर। आज की इस प्रोग्राम में लव इन नेपाल फिल्म का नाम सोनू निगम प्रोग्राम में

सोनू निगम की आवाज में ये गाना बस आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था लव इन नेपाल। उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के ये प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। चले प्रोग्राम में शान की आवाज में। शान की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए श्रीया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। इसी टारगेट नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। तो चले प्रोग्राम में आपकी बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है एक बार फिर से आज की प्रोग्राम में शान की ओर हम आपको ले चलते हैं।
1: कहाँ से ढूंढ कर लाते हो तुम ये सब प्राचीन वर्ड्स?
2: जहाँ से मैं आया हूँ।
1: ओह, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं?
2: प्यार।
1: जस्ट अ टिप, हमारी दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, तो शायद आपको खाली हाथ जाना पड़े, क्यों ना?

बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में शाम के बाद अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

ने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में एक और खूबसूरत सा गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। क्यों?

0: न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन।
1: मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम तुमसा नहीं देखा। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले मन्ना डे की ओर और मन्ना डे की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, दिल का हाल सुने दिलवाला, श्री 420 फिल्म का नाम है।

0: पुलिस वाला दिल का हाल सुन दिल वाला सीधी सी बात न मिल
1: मन्ना डे की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम श्री 420 दिल का हाल सुने दिल वाला गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जिंदगी देने वाले सुन द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद

वो प्रोग्राम में पेश की गई द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी की आवाज में अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। लता मंगेशकर प्रोग्राम में आपकी बार होगा और

मंगेशकर की आवाज में गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था झुक गया आसमान। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार फिल्म का नाम होगा लूटमार।

गनगू बीच की गई जब छाई मेरा जादू। आशा जी की आवाज में फिल्म का नाम था लूटमार। उसी ये फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की सदिये। जब छाई मेरा जादू ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मुकेश जी की आवाज में अब की बार ये गाना।

रेडियो बेस पे इसकी सर ये द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले फिल्म शर्मिले की ओर, किशोर और लता जी की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030 265 65 60।

रेडियो SBS की जरिए गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। लाइव की जरिए रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

मजरी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार ये गाना की ओर, कश्मीर की गली फिल्म का नाम होगा और आशा और मोहम्मद रफ़ी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुनो हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशुली रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशुली रामलाल, दी यू फॉर हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्रामा गीतों के लहर। विल टू रिएक्ट कैन इट ऑलवेज सर्व माय नादर वेबसाइट www.radiosbs.nl of bel gerust met de studio naar 032 62 66 11. Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag, en dat is...

मुझे रंग दे इसको समुद्र। आशा भोसले एंक वाम फिल्म तक्षक एंड आयो द एल्बम दुनिया जी से कहते हैं कम थो समुद्र जगजीत सिंह। कल चौदहवीं की रात थी।

आपकी कशिश इज द फिल्म आशिक बनाया आपने एन इज गजोंगे डोर हिमेश रेशमिया एंड गजोंगे डोर राहुल मिश्रा कम्स आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड तू ही है।

जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह मैथ। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। दित प्राख्त लीजिए सुसों दो जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। फोन लीजिए सो खुसों दो जगजीत सिंह एंड कॉम दे सिकेर आर द फिल्म अर्थ। झुकी झुकी सी नजर, दिल में प्यार है कि नहीं।

दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, आपने सुना फिल्म रोजा से। और अगला गाना है जय जय शिव शंकर फिल्म वॉर से। ये एक फिल्म है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का।

0: तू है अब जो बाहों में करार है, रब का शुक्राना आपने सुना जन्नत दो से। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जिन्नी वेद सनी से, मिक्का सिंह, नेहा कक्कर और बादशाह की आवाज में आप सुनिए सावन में लग गईया के दिल मेरा।
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी। ये बहुत ही खूबसूरत अल्फाज आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म वत से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है चाइना टाउन से। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज़ है हमारा दिलरुबा।

साथ कहाँ, हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ, ये बेमिसाल हुस्न।

पैसा ये पैसा आपने सुना तोतल धमाल से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है जाने तू या जाने ना से। राशिद अली की आवाज में आप सुनिए कभी कभी अदिति, जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है।

मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है इस आर द फिल्म अजनबी एंड आर द फिल्म दबंग 3 कम खसों तो जावेद अली नैना लड़े।

अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आपने सुना सुन मितवा। फिल्म का नाम है लगान। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म गदर से। उदित नारायण की आवाज में आप सुनिए उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।

फिल्म मेड इन चाइना से आपने सुना नेहा कक्कड़ की आवाज में ओढ़नी, और अब आप सुनिए सोनू निगम और अलका याचिक की आवाज में फिल्म रेफ्यूजी से। ये फिल्म पहला फिल्म है अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। ऐसा लगता है जो ना हुआ है होने को है।

यही काफी है, हर एक मौसम भी अपना लगे, तेरे इश्क में ये दिल कहे, अब और कुछ भी ना चाहिए।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागे।

दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। इस खसम दूर सोनू निगम एंड अल कयाच ने कैंक वाम आउट द फिल्म धड़कन। आउट द फिल्म बेल बॉटम कम दाखसम दूर प्रतिभा सिंह खैर मंग दे।

मेरा दिल गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी वास आउट द फिल्म मरते दम तक. एंड देन हाउ फर्दर मैट आउट द फिल्म जवाने जाने मन. मेरे बाबूला, gezongen door Harshdeep Kaur en Akhil Sachdev, is het volgend liedje in het programma Geetum Kelleher.

तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, वॉज आउट द फिल्म बॉम्बे। एंड आउट द फिल्म दिल ही दिल में कम्स गसोंग दोर हरिहरन एंड स्वर्णलता। इम्तिहान हम प्यार का देखे, राह देखे, क्या है नतीजा, डोला डोला मन डोला।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.